प्रतिबेला मै चाहिँ के गर्दै होलिन पिढीमा बसेर के कुरा गर्दी हो कहिले हाँस्दी हो कहिले रुदी हो।